0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: City FM 89.
6: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance, aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
7: ना किदार ना इंतजार, अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ. एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें, अपना टिकट बुक करें, अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ, कभी भी कहीं भी. ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका.
8: Follow the 20-20-20 rule. Every 20 minutes, look 20 feet away for 20 seconds to refresh your eyes.
9: Brought to you by Dettol.
0: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
10: No talk.
11: Just you
10: and the music.
11: Back to back
10: starts now. The

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# हैश और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है
3: ना किदार ना इंतजार अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें अपना टिकट बुक करें अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ कभी भी कहीं भी ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका
4: क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर का खतरा नहीं बल्कि एक हकीकत है जो दुनिया भर की मईशत माहौल और इंसानी जिंदगी को मुतासिर कर रही है पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा इस खतरे की पहली सफ में खड़ा है जहां सैलाब ग्लेशियर फटने के वाकयात शदीद गर्मी खुश्कसाली और फजाई आलूदगी जैसे मसाइल तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने माहौलियाती तहफ्फुज़ में एक मिसाल कायम की है बिलियन ट्री और 10 बिलियन ट्री जैसे मनसूबों ने सूबे में जंगलात के रकबे में नुमाया इजाफा किया आज सूबे के जंगलात न सिर्फ माहौल को महफूज बना रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के कार्बन अखराज को कम करने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं साफ तवानाई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जदीद फजाई निगरानी और माहौल दोस्त इकदामात एक सरसब्ज और महफूज मुस्तकबिल की तरफ अहम कदम है आएं हम भी दरख्त लगाएं आलूदगी कम करें और अपने माहौल के तहफ्फुज में अपना किरदार अदा करें क्योंकि आज का फैसला आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तय करेगा
5: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا
6: Attention. The standard commute has been decommissioned.
7: Introducing a system override for your ears.
6: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
8: Join ABD as he takes over the streets.
6: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email.
7: Your evenings just got an upgrade.
8: The Rush Hour with ABD.
6: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
7: Tune in or get left behind.
9: City FM 89.
1: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: City FM 89.
1: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में Jazz, meri superpower. Your offer makhsoos ilaqon tak mehdood hai.
2: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
3: A new era begins.
4: City FM 89, we're playing your song.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Netflix has released the first official trailer for In the Hand of Dante, a historical crime drama directed by Oscar-nominated filmmaker Julian Schnabel. Oscar Isaac leads a massive ensemble cast in a dual role as both modern-day author Nick Toshe and the legendary Italian poet Dante.
7: City FM 89.
8: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू है।
9: एक दो तीन येलो।
10: ये क्या है भाई?
11: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज कैश पर येलो से पेमेंट करो, और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 installments में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैज कैश।
11: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
12: You're listening to City FM 89.
13: We're playing your song.
1: You're listening to
14: Non-stop hits.
15: No talk. Just you and the music.
16: Back to back starts now.

0: to your song.
1: Only on City FM 89.
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: Attention, the standard commute has been decommissioned.
5: Introducing a system override for your ears.
6: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
7: Join ABD as he takes over the streets.
6: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
5: your evening

0: on.
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
3: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
4: ना किदार ना इंतजार, अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ। एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें, अपना टिकट बुक करें, अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ, कभी भी कहीं भी। ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका।

0: The perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: Pura hafta. Rabta barkarar. Jazz lajawab plus offer ke saath. Abhi *5655 hash dial karo. Aur pao 8 GB data. 4000 jazz minutes aur SMS. Aur 80 dusre network minutes. सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैस के साथ आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू हैं।

0: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।
2: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
3: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
4: ना किदार ना इंतजार, अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ। एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें, अपना टिकट बुक करें, अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ, कभी भी कहीं भी। ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट जीतने का मौका।
5: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
6: ये क्या है भाई?
5: 1 जैकेट शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
8: City FM 89, we're playing your song.
9: Hold on, special delivery coming through.
10: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
11: We're now live on WhatsApp.
12: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
11: It's as easy as 03142-898989.
10: Save our number now and WhatsApp us.
13: City FM 89.
11: You're listening to
14: Non-Stop Hits.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
4: Trending today.
5: Netflix has released the first official trailer for In the Hand of Dante, a historical crime drama directed by Oscar-nominated filmmaker Julian Schnabel. Oscar Isaac leads a massive ensemble cast in a dual role as both modern-day author Nick Toshe and the legendary Italian poet Dante.
1: City. FM 89.
6: 500 ml banai 20 aur 800 ml banai 32 glass.
7: Kashi Tameshi.
8: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्ता वार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है

0: पाकिस्तान
1: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक अब करो सफर टेंशन फ्री क्योंकि जैस कैश है ना
3: शराय तो जवाबित लागू है
4: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात
5: ये नेचुरल है
6: तो बेहतर है
5: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कर्शी जामिशीरी
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज़

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: पूरा हफ्ता राप्ता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ। अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा, 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में। बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ। आपकी, मेरी, हम सबकी सुपर पावर। शराइतो जवाबित लागू हैं।

0: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।
2: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो।
5: नई स्कीम,
6: कमिटी,
4: लाड बनाए फरो।
7: ये मुफ्त की इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
8: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ।
7: आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: शराइत जवाबित लागू है।
9: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात,
10: ये नेचुरल है,
11: तो बेहतर है।
10: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, कर्शी जामिशीरी।
12: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
13: ये क्या है भाई?
12: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
14: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
12: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
15: सिटी एफएम 89 City FM 89 is now live on WhatsApp.
16: It's so easy.
17: 0314-289-8989.
16: Save, text, voice note or call to get your song played.
17: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
18: City FM 89, we're playing your song.
17: You're listening to
19: Non-Stop Hits.
20: No talk.
21: Just you
20: and the music.
21: Back to back.
20: Stop.

0: पाकिस्तान।
1: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट क्यूआर से करने पे पाओ 10

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
2: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो, और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
5: City FM 89, we're playing your song.
6: Everybody go.
7: City FM 89 is now live on WhatsApp.
8: It's so easy.
9: 0314-289-8989.
8: Save, text, voice note or call to get your song played.
9: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
10: The first time at the disco. When you love someone, it's natural, not demanding. Holiday with friends. Retro cinema.
11: Hey, where did we go? Days when the rains came.
10: Through music that speaks to you. Reconnect to your past with me, Amr Nasir, on Retro 89.
12: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. Only on City FM 89.
13: City FM 89.
14: Sounds different.
15: You're listening to
16: Non-Stop Hits.

0: Pakistan.
1: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
2: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
3: Kashi jame shiri sab peete
4: Trading, trust me bro.
5: Nice scheme.
6: Committee.
4: Lad banaye faro.
6: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
7: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैशबैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत ज़वाबित लागू हैं।

0: पाकिस्तान
1: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर. इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक. अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना.
3: शराय तो जवाबित लागू है.
4: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास.
5: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो.
6: नई स्कीम,
7: कमिटी,
5: प्लाट बनाए फरो.
7: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो.
8: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ. आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
9: शरायत ज़वाबित लागू है.
10: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात.
11: ये नेचुरल है,
12: तो बेहतर है.
11: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कर्शी जामिशीरी.
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक. अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना.
3: शराय तो जवाबित लागू है.
13: सिटी FM 89.9.
14: 1, 2,

0: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
1: शराइत ज़वाबित लागू है।
2: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।

0: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
1: ड्यूलक्स 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।

0: Pakistan.
1: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance. And now, Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
2: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
3: Karshi jame shiri, sab peete hai.
4: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: Follow the 20-20-20 rule. Every 20 minutes, look 20 feet away for 20 seconds to refresh your eyes.
7: Brought to you by Dettol.
8: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
9: ये क्या है भाई?
10: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
11: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैज कैश।
10: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
12: City FM 89. You're listening to
13: Non-Stop Hits.
14: No talk.
15: Just you
14: and the music.
15: Back to back
14: starts now.

0: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
1: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात,
2: ये नेचुरल है,
3: ये तो बेहतर है।
2: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, कर्शी जामिशीरी।
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
7: Attention, the standard commute has been decommissioned.
8: Introducing a system override for your ears.
7: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
9: Join ABD as he takes over the streets.
7: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
8: your evenings just got an upgrade.
9: The rush hour with ABD.
7: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
8: Tune in or get left behind.
10: City FM 89, we're playing your song.
11: Everybody go.
12: The first time at the disco.
13: When you love someone, it's natural, not demanding.
12: Holiday with friends. Retro cinema.
14: Hey, where did we go? Days when the rains came.
12: Music that speaks to you. Reconnect your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
15: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. only on City FM 89.
16: Don't adjust your dial.
17: This is
18: City FM 89.
19: You're listening to
1: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू है।
2: You're listening to City FM 89.
3: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो, और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
6: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
7: A new era begins.
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू है।
2: City FM 89
8: On the dial. You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: City FM 89.
6: Ek do teen yellow. Ek do teen yellow.
7: Ye kya hai bhai?
8: Ek jacket, shoes ho ya watch, jo chahe select karo. Do Jazz Cash par yellow se payment karo. Aur teen येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
9: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैस कैश
8: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
0: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @ cityfm89
2: फॉर योर इन्फिनिट स्क्रॉलिंग रील फिक्स
10: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक अब करो सफर टेंशन फ्री क्योंकि जैस कैश है ना
11: शराइत ज़वाबित लागू है
12: यू आर लिसनिंग टू सिटी FM 89
13: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू
0: नॉनस्टॉप हिट्स
14: No talk.
15: Just you
14: and the music.
15: Back to back
14: starts now.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: Attention, the standard commute has been decommissioned.
5: Introducing a system override for your ears.
6: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
7: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
9: your evenings just got an upgrade.
7: The rush hour with ABD.
6: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
9: Tune in or get left behind.
10: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
11: ये क्या है भाई?
12: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
13: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
12: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
1: You're listening to
14: Non-Stop Hits.